0: कृष्णा
1: राधे कृष्णा
0: मिट जाएगी तेरी तृष्णा भूल जा अब तू राधे कृष्णा बन जाऊं मर गया
1: राधे श्याम।